कीमत पाए ना कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई ना जाने तेरा किता केवड चीरा रहाओ। सब सुरती मेल सुरत कमाई, सब कीमत मेल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धां पुरखां कियां वड्याईया। तुद वेण सिद्धी कने ना पाईया, करम मिले ना ही ठाक रहाईया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू दे तिसे क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरे मर जाऊ, आखण औखा साचा नाऊ। साचे नाम की लागे भूख, उत भूख है खाए चलिए दुख। सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वड्याई, आग थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलके आखण पाहे, वड्डा ना होवे घाट ना जाए। ना ओ मरे ना होवे सोग, देंदा रहे ना चुके भोग। गुण एहो होर नाही कोए, ना को हुआ ना को होए। जे वडे आप ते वड तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात। खसम विसारे ते कमजात, नानक नावे बाज सनात।

मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जीवड़ अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा, तू एको जी, तू निहचल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सोई। तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुदे आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मेंडा साई, जो तो भावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हो पाई। रहाऊ सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई ना है। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाणे। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखै जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़ै पहिले निवासा, पाणी पावक तिनह किया। पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा तां डूबियले। मन एक ना चेतस मूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरे कितै नकाम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग पवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै। रहाओ जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधु ना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। कबियो बाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दैरशा, पूर्ण हुए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावो, आप हाथ दै मोहे बचावो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन को आज संघरियै। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याऊ, जो बर चहूं सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारियै, चुन चुन सतर हमारे मारियै। आप हाथ दे मुझे उबरियै, मरण काल का त्रास निवरियै। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुजु करियो रक्षा। राख लिहो मोय राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बब तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा।
जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आदंते कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसी को हमारी। सकल प्रजा जिने आप सवारी, शिव कण को शिव गुण सुख दियो। शत्रण को पलमो बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सापर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साध उनके सुखी।

पारा। जब आकर करत हूं कब हूं, तुम मैं मिलत दे तार सब हूं। जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप अपनी भोजो चारे, तुम सब ही ते रहत निरालम। जानत बेद भेद अरियालम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद संभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा, ताको कर पाहन अनुमानत, महा मूड कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पेव,

प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कई पूपा अंडज जेरज सेत जकीनी उत भुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा वै बैठा कहूं सिमट प्यो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जी अस तुझ तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट न आए हैं रच्छा हुए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो ताके ताप तनक मोहर हो रिद सिद कर्मो सब हुई दुष्ट शाश वै सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहि उबारा।

मथुरा सगल द्वार को छाड़ के गहु तुहारो द्वार बागहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार आराम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आईया शब्दो ता गावो हरि केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कार सब सवारना सब ना गला समरा स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे कर ता तेरे सब कुछ है जिस दे सो पावे सदा सिवत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आय वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान कीता गुरु विटो जिस दियां ए वडियाईयां कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सपागै घर सपागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दो तुद वस कीते काल कंट कुमारिया तुर करम पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे कह नानक तां सुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहा पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पइयो सा संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सुधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होय उधारो ए वस्त जी ना जाई नित नित राख उर धारो तम संसार चरण लग तरिये सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जो कितोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वै हरिया तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज

बोलना जी सतनाम वाहिगुरु, एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरें कर नौ निदया वे ताए, सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब, सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत गुरु

हम अवगुण परे एक गुण नहीं, अमृत शाडु बिखे बिखु खाई। माया मो परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत,

जुगो जुग अटल, चवर शतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर जारा जहूर, शब्द गुरु बाणी के बोहे थमरत के दाते, दसां पातशाहियां दी जोत, साहब सच्चे पातशाह सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच शामा वेले दे सजे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे, सन्मान योग सत्कार योग सतसंगी जनों, सतगुरां ने बड़ी अपार बख्शिश रहमत कीती है आप सब। गुरदेव दी अमृतमई बाणी दे कीर्तन मेरे तों पहला गुरु करके रागी जथे पासों सरवण कर रहे सी। तो आओ साध संगत, समा है लड़ीवार चल रही भगत बाणी दे विच्चों भगत कबीर साहब जी दे सलोकां दी विचार दा। तो जिन्हें श्री राम सतगुरां दे हजूर बैठे हो जां घरां विच मीडिया दे माध्यम राही सरवण कर रहे हो, फतेह दी सांझ पाईए। इक्के वारी कहण ते आखणा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कबीर साहब दे दो श्लोकां दा पाठ मैं आप जी दे नाल सांझा कीता है। श्लोक नंबर हन 239 अते 240। वेखो हुण उत्थे एक शब्द मैनूं वरतना पिया भी श्लोक नंबर, तो ये मैं सिर्फ तां बेनती कर लगा भी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे जिहड़े पन्ने ने अंक ने, उन्हां नूं पहिलां पत्रे कहा जांदा सी, फिर अंक कहा जांदा है जां पन्ने कहा जांदा है। तो उन्हां पन्नियां दे विच, अंकां विच जां पत्रियां दे विच फिर अगे बहुत सारे शब्द दर्ज ने। तो उन्हां दी जदों आपां गिणती करांगे तो फिर वो इसे तरीके नाल होवेगी, उत्थे फिर होर कोई शब्द जिहड़ा है आपां नहीं वर सकते। एक गल सानू बड़ी स्पष्ट रूप में समझण दी लोड़ है भी गुरु ग्रंथ साहब दे पत्रियां नूं एक अंग कहण दा आम रवाज है भी अंग ने, पर ये पिछले कुछ समय तो ये शब्द बड़ा प्रचलित होया, पर असल विच ये है पत्रे, पत्रे अंक कह लो। तो क्योंकि जिहड़े इस फिलोसफी नूं मन्नदे ने वो कहिंदे ने भी गुरु साहब जिहड़े ने वो देह सरूप ने ते देह दे हमेशा की हुंदे ने अंग हुंदे ने, जिवें आपणे ने अंग सारे अखां ने नक ने कन्न ने, इदां अंग ने। पर जिहड़ा उहनां दा लॉजिक है जां इह जिहड़ा तर्क है वह कोई बहुता वाजब नहीं, क्योंकि अंग ते फिर सारे शरीर दे इक्को जिहे हुंदे ने, मेरे तुहाडे अपने सारे शरीर दे अंग जिहड़े ने वह इक्को जे ने, अपनी बॉडी दियां हड्डियां सारियां इक्को जिहियां ने। ते आम कहा जांदा हुण तुहानूं इहदे बारे वध पता भी किन्नियां बोनस हुंदियां ने बंदे दे शरीर विच, किन्नियां वेन्स ने, किन्नियां नाड़ियां ने, एक जंजाल अंदर नाड़ियां दा है, शरीरां दा है। तां ही महाराज कहिंदे ने ना, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, नाड़ियां दा इक पिंजरा बणिया होया बंदे दी बॉडी विच। तो जे असी गुरु ग्रंथ साहब के अंगा की गल करते हैं तो जिहड़े पुरातन सरूप सन, पुरातन बीड़ा सन, उहदे अंग वध घट भी सन। ये जिहड़ा अजोका सरूप जिहड़ा शब्द है इहदे 1430 अंक ने, जिहड़ा मशीनी प्रिंटिंग विच शब्द आ। पर जे तुसी उस तो पहला वेखोगे तो फिर इन्हां दो नूं मिला के एक पत्रा कहा जांदा सी, वह 700 भी है, 1700 भी है, वो तो लिखण शैली उत्ते है ना भी बंदा किन्ना लिखदा। एक एक हुण तुसी कई बार कई बच्चों की लिखाई वेखो, उन्होंने मोती परो के लिखने ने, ऐन पूरी टका के लिखाई जिन्हों आप कहने, तो वह मोती जो परोंदे ने तो कई बार एक पन्ने दे वेची, एक अंक दे वेची वह बहुत सारे शब्द लिख देंगे। तो कई बार जिहड़ा आम बंदा अद्धे पेज उत्ते लिख लैंदा, अद्धे अंक उत्ते लिख लैंदा, वह दो अंकों के उत्ते जिहड़े होर थोड़ा डिजाइन नाल लिखणगे उस तरीके नाल लिखणगे। तो एक तो यह जिहड़ी एक मॉडर्न जी सानू नवी नवी फिलोसफी जिहड़ी दित्ती जा रही है, इस तों सानू सावधान रहने की लोड़ है। यदा रीज़न पता की है, फिर अस जदों अंग जां इदां दे शब्द वरते जाणगे फिर सानू गुमराह भी इस तरीके नाल कीता जांदा है भी वेखो महाराज दे अंग ने। तो जिहड़ा अंग धारी है वह गुरु नहीं हो सकता,
जिन्हें अंग साडा गुरु कौन है शब्द है तो शब्द गुरु ग्रंथ साहब के रूप में इस पोथी के रूप के आप कहने पोथी परमेश्वर का थान ते पोथी दे की ने जा पत्रे ने जा पन्ने ने ते आज जे मॉडर्न एरा दे विच आपां अपने बच्चियां नूं जे इंग्लिश दे विच दसना होवे ते फिर कई जना वख्यान करके आपां इहो ही कहिंदे आ वी गुरु ग्रंथ साहिब दे इन्ने पेज उत्ते आ गल लिखी हुई है। मान लो गोरियां दे विच आपां जाणा होवे जे तुहानूं कोई इंटरफेथ जिहड़ियां आपस विच टॉक्स हुंदियां ने जिथे क्रिश्चन भी है जिथे गोरे भी ने जिथे यहूदी भी ने उत्थे जदों आपां जाणा है ते उन्हां दे विच जदों आपां बोलणा है ते उदों आपां शब्द वरतांगे जां वर्सा कहांगे जां पैराग्राफ कहांगे जां स्टैंजा कहांगे जां पेज कहांगे तो एक ते इस चीज़ विचों सानू थोड़ा जिहा बाहर आउण दी लोड़ है। असीं इस चीज़ नूं समझीए वी गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द है, गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़े ने उह पोथी दे रूप विच ने, आदि बीड दे रूप विच ने, बीड दे रूप विच ने ते बीड दे पत्रे ने, अंग नहीं हुंदे। तो ये क्योंकि एक धिर निरंतर जिहड़ा कर्मकांडी जां पखंडी प्रचार इदां दा करदी है भी लोकां दा जिहड़ा ब्रेन वॉश है वह कर दिता जांदा। तो गुरु कृपा करे, साडे गुरु की कदी बेअदबी नहीं हुंदी, शब्द की कदी भी बेअदबी नहीं हुंदी। तो उहदी संभाल लई जरूरी है भी जिवें जिन्ना क प्रबंध जिहड़ा है श्री अकाल तख्त साहिब की मर्यादा कहिंदी उहदे लई रुमाला जां जिहड़ी भी चीज़ की जिहड़े एनवायरमेंट की लोड़ है उहनूं बिल्ड करना जरूरी है। पर साडा गुरु वह है, वह अविनाशी पुरख है, ना आवै ना जाए, वह अविनाशी है, वह कभी भी मरदा ते जमदा नहीं है। हुण तुसीं ये नहीं कह सकते भी जब जी की बाणी मर जाएगी, वह कभी नहीं मरेगी, वह सदा ज्यौदी रहेगी। हाँ कोई शरारती जिहड़ा है वह शरारत कर जाए ग्रंथ के नाल गल वखरी है, पर अदरवाइज साडा गुरु वह शब्द है जिहड़ा ना जमदा है ते जिहड़ा ना मरदा है। इस करके साडे श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश दिहाड़ा तो हर साल आएगा, उत्थे भी आप जन्म दिहाड़ा शब्द नहीं वरतते। प्रकाश दिहाड़ा तो हर साल आएगा पर रहिंदी दुनिया तक कदी इन्हां दा ज्योति जोत दिवस नहीं आएगा। तो ये थोड़ी जी मैं क्लीयर करनी सी क्योंकि हुण जदों अगे लिखे आए हुण आपां सलोक पढ़ रहे हैं अगे, तो सलोक है 239 नंबर ते 240 नंबर। चलो पत्रियां नूं ते मैं कह देवांगा भी इहनूं मैं कहा भी इह 1377 अंग दे उत्ते दर्ज ने, पर जिहड़ा अग्गे 239 नंबर सलोक है 240 नंबर है उहनूं की कहा जावे, उहनूं वेंस कहा जावे, नाड़ियां कहा जावे? तो सानूं थोड़ियां जिहियां गल्लां समझण की लोड़ है, विचारन की लोड़ है। खैर 239 ते 40 नंबर दो सलोकां दा पाठ मैं तुहाडे नाल सांझा कीता है। मेन साडा जिहड़ा परपज होना चाहिए गुरु घर के आने का वह है भी आप बाणी नू समझना है, बाणी नू विचारना है। तो बाबा कबीर साहब कहिंदे ने जौ तोहे साध पिरम की, उन्होंने आख्या भी जे तेरे मन दे विच ना साध नू गुरु नू मिलन की इच्छा है, जे तू गुरु नाल प्रेम करना, पिरम का अर्थ हुंदा जी प्रेम, साध का अर्थ दा सिक तांग जिहनू आपां कहिंदे आ। कबीर जौ तोहे साध पिरम की, जे तेनू मिलन की इच्छा है, सीस काट कर गोए। उन्होंने आख्या भी वेखो गुरु का मिलाप तो होना जिदन तू अपना सिर ला देगा। हुण प्रैक्टिकली ये गल पॉसीबल नहीं है कि आप जिन्हें भी इतने बैठे हाँ जां आप गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जो वेखते हाँ, भाई मरदाना जी वेखते हाँ, उन्होंने आ सीस नहीं सी उतारिया, क्योंकि ये सीस तुसी उतार दोगे तो फिर तुसी खत्म हो गए, जान चलेगी, फिनिश हो गई खेड़। तो किहड़े सीस नूं उतारन की लोड़ है जिहड़ा बंदे नूं बाणी कहिंदी है, ये सवाल है ना, तुसी पढ़दे हो जौ तो प्रेम खेलण का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ। आखिर इत मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै कान ना कीजै। फिर बाबा जी ने बाणी दे विच ये भी लिखिया दर्ज किया शब्द बचन भी तैं साहिब की बात जे आखै, आख्या हे वाहिगुरु जिहड़ा तेरी मैनूं कोई बात सुणाउंदा कोई गल कहिंदा, कहो नानक क्या दीजै उहनूं मैं की भेटा करां, उहदे लई मैं की दवां। ते महाराज अगली पंक्ति च जवाब दिंदे होए कहिंदे ने तैं साहिब की बात जे आखै कहो नानक क्या दीजै, सीस वड्डे कर बैसण दीजै,
ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ। ਸੀਸ ਵੱਢੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀ ਜੈ ਵਿਣ ਸਿਰ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਣ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੀਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੀਸ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸੀਸ ਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਲੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਧੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੇ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵੱਢ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਵਾਂਗਾ। ਸੀਸ ਵੱਢੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੀਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੰਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਿਰ, ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ, ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਉਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਪੱਗ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ ਸਕਦਾ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਬੰਨਾਂਗੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਐਸੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਲਓ ਇੱਕ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਕਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤੱਤੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ, ਸਮਝਦੇ, ਤੱਤੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਭਰਨਾ, ਐਸ ਪੋਡੀਅਮ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ, ਵੀ ਉੱਠੋ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਪਤ ਲੈ ਗਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਫਿਰ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ, ਸਮਝੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੋ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਸੀ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ, ਮਾਸੂਮ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਜੀਵਿਆ, ਸੋ ਜੀਵਿਆ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੱਸਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਊਂ, ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ

सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ बाणी गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सार गुर बाणी कह सेवक जन मन परतख गुरु निस्तारे बलिहारी गुर अपने बलिहारी गुर अपने द्योहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार जे सौ चंदा युग में सूरज चढ़े हजार एते चानण होंदिया गुरबिन घोर अंधार सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ सोरठ महला नावा मन रे कौन कुमत तैलीनी परदारा निंदिया रस रचियो राम भगत नहकीनी मन रे कौन कुमत

अंत संग काहू नहीं दीना, बिरथा आप बंधाया। ना हर भजियो ना गुरजन सेव्यो, ना उपजियो कछ ज्ञाना। घट ही माहे निरंजन तेरा, तैं

जिन हर का नाम ना चेते ओ बाधे जन्मे आए। कबीर आसा करिए राम की, अवरे आस निरास। नरक परे ते मन ही जो हर नामे उदास। कबीर सिख शाखा बहुते किए,

गीत। कबीर का रण बपुरा क्या करे, जो राम न करे सहाय। जेहे जेहे डाली पग धरो, सोई मुरमुर जाए। कबीर अब रहा को उपदेश ते, मुख में पर है रेत।

कबीर चतुराई अत कहनी हार जप हृदय माहे। सूरी उपर खेलना ग्रह तठा हर नाहे। कबीर सोई मुख तन है जा मुख कहिए राम। देही किसकी बापुरी पवित्र होए गो ग्राम।

या सुख ते भिखिया पहली जो हर सिमरत दिन जाहे। कबीर सब जग हों फिरे ओ मांदल कंध चढ़ाए। कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। मार्ग मोती बिथरे अंधा निकस्यों आए। जोत बिना जगदीश की जगत उलंगे जाए। बूढ़ा बंस कबीर का उपजियो पूत कमाल। हर का सिमरन छाड़ के कर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ न लीजे कोए। पाछे पाऊ न दीजिए अगे हुए सो होए। कबीर जग बांधो जे जेवरी तेह मत बंद हो कबीर। जह हे आटा लोन ज्यों सोन समान शरीर। कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो सो जाई सैनाहा। अजहों जियो ना छुड़ई रंकाई नैनाहा।

कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कै कह कहो कहे ना को पतिया आए, हर जैसा तैसा ओही रहो हरख गुण गाए। कबीर चुग चितारे पी चुग चुग चुग चितारे,

छाया बरख परी सरताल, चात्रक ज्यों तर सतर है तिनको कौन हवाल। कबीर चकई ज्यों निस बिछड़े आए मिले पर बात,

रहो रे शंख मजूर, देवल देवल ताहड़ी देस हे उगवत सूर। कबीर सूता क्या कर हे, जाग रोए पै दुख। जा का बस गोर में है, सो क्यों सोवै सुख।

कबीर ठाकुर पूजहे मोल ले, मन हठ तीर्थ जाहे। देखा देखी स्वांग तार, भूले पटका खाहे।

कबीर पानी हुआ था क्या भया, सीरा ताता होए, हार जाने ऐसा चाहिए जैसा हार ही होए। ऊंच

मान मुनि मुनीवर गले मान सबै को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलिया शब्द जो बाहिया एक लागत ही पोए मिल गया परिया कलेजे छेक। कबीर साचा सतगुर क्या करे ज्यों सिखा मह चूक। अंधे एक ना लागई ज्यों बांस बजाइए फूक। कबीर है गए बाहन सकन कान छत्रपति की नार। तास पटंतर ना पुजे हर जन की पने हार। कबीर नृप नारी क्यों निंदी है क्यों हर चेरी क्यों मान। ओह मांग सवारे बिखै को हो सिमरे हार नाम। कबीर थुनी पाई थित पई सतगुर बंदी तीर। कबीर हीरा बन जया मान सरोवर तीर।

रखूं। तब हिरण की साट कबीर काम परे हर सिमरी है, ऐसा सिमर हो नित अमरापुर बासा करहो हर गया बहो रैबित। कबीर सेवा को दोए पहले

नमः। कबीर जेह मार्ग पंडत गए पाछे परी बहीर। एक अब घट काटी राम की तेह चढ़ रहे हो कबीर। कबीर दुनिया के दोखे मुआ चालत कुल की कान। तब कुल किसका लाज सी जबले तरे मसान। कबीर डूब होंगे रे बाप रे बहु लोगन की कान। पारोसी के जो हुआ तू अपने पी जान। कबीर पली मधुकरी नाना बिद को नाज। दावा काहू को नहीं बड़ा देश बड़ राज। कबीर दावे दा जन होत है निर्दावे रहे निशंक। जो जान निर्दावे रहे सो गन इंद्र सो रंक। कबीर पाल समूहा सरवर परा।

कबीर मन शीतल पहया पाया ब्रह्म ज्ञान। जिन ज्वाला जग जारिया सो जन के उदक समान। कबीर सारी सिरजन हर की जाने नाही कोए। कह जाने अपन तनी कह दास दीवानी होए। कबीर पली पई जो पौ परिया दिशा गई सब भूल। ओरा घर पानी पया जाए मिलो टलकूल। कबीरा थोर सकेल कै पुरिया बांधी देहे। दिवस चार को पेखना अंत खेह की खेहे। कबीर सूरज चांद कै उदय पई सब देहे। गुर गोबिंद के बिन मिले पलट पई सब खेहे। जहां अन पाओ तै पै नहीं जहां पाओ तहां हर नाहे। कहियो कबीर विचार कै संत सुनहो मन माहे।

तेन सुख नींद बिहाए। हम हो जो बुझा बुझना पूरी परी बलाए। कबीर मारे बहुत पुकारिया, पीर पुकारे और लागी चोट मरम की रहो कबीरा ठाओर। कबीर चोट सहेली सेल की लागत ले उसास, चोट सहारे शब्द की तास गुरु मैं दास। कबीर मुल्ला मनारे क्या चढ़े साई ना बहरा होए, जा कारण तू बांग देहे दिल ही पीतर जोए। शेख सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए। कबीर जागी दिल साबत नहीं ताको कहां खुदाए। कबीर अल्लाह की कर बंदगी जेह सिमरत दुख जाए। दिल में साहीं प्रगटै बुझै बुलंती नाए। कबीर जोरी किए सो जुल्म है, कहता नाओ हलाल दफ्तर लेखा मांगी है। तब होए गो कौन हवाल, कबीर खूब खाना खिचड़ी जा मह अमृत लोन। हेरा रोटी कारने गला कटावे कौन,

एक एक ने के मिल गया एक समाना एक। कबीर जाकर साधना से भी है हर की सेवा नाहे, ते कर मर हट सारखे भूत बसे तिन माहे। कबीर गूंगा हुआ बाबरा बहरा हुआ कान, पाव होते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण।

कबीर निर्मल बूंद आकाश की, पार गई भूम बेकार, बिन संगत यो मन ही होए गई पाठ चार। कबीर निर्मल बूंदे आकाश की, लीनी भूम मिलाए, आनक सयाने पच गए ना निरवारी जाए। कबीर हज काबे हो जाए था, आगे मिलया खुदाए, साई मुझ स्यों लर परया, तुझे किन फुरमाई गाए। कबीर हज काबे होए होए गया, केती बार कबीर,

कहते है जो हलाल, दफ्तर दई जब काट है होएगा कौन हवाल। कबीर जोर किया सो जुल्म है, ले जवाब खुदाई। दफ्तर लिखा निक से, मार मोहे मोहे खाहे। कबीर लेखा देना सोहेला, जो दिल सूची होए। उस साचे दीवान में पल्ला न पकड़े कोई। कबीर धरती अरे आकाश में दोए तों बरी अबद, खाट दर्शन संसे परे, अर 84 सिद्ध।

कबीर कुकर पंकना करंग पिछे उठताए करमी सतगुर पाया जिन्हों लिया छड़ाए। महला पंजवा। कबीर धरती साध की तस्कर बैसे गाहे धरती पार ना व्यापई उनको लाहू लाहे। महला पंजवा। कबीर चावल करने तुख को मोहली लाए संग को संगी बैसते तब पूछे धर्म राय।

कबीरा हमरा को नहीं हम किस हूं के नाहे, जिन्हें रचन रचाया तिस ही माहे समाहे। कबीर कीचड़ आटा गिर परया किछू ना आयो हाथ, पीसत पीसत जाबिया सोई नभिया साथ। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही औगन करे काहे की कुशलात, तो हाथ दीप कुए परे। कबीर लागी प्रीत सुजान स्यों, बरजे लोग अजान ता स्यों टूटी क्यों बने। जाके जी प्राण कबीर कोठे मंडप हेत कर, काहे मरहो सवार।

कबीर जो मैं चितवो ना करें, क्या मेरे चितवे होए। अपना चितवे हर करे, सो मेरे चित ना होए। महला तीजा, चिंता पे आप कराए सी, अचिंत पे आपे दे। नानक सो सलाही है, जे सबना सार करे। महला पंजवा।

कबीर केसो कुकिए, ना सोइए आसार। रात दिवस के कूक ने कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन भया, मन कुंचर मैं मंत। अंकस ज्ञान रतन है, केवट बिरला संत।

कबीर आखी केरे माटुके पल पल गई बिहाए मन जंजाल न छोड़े जम जिया दमामाए कबीर तरवर रूपी राम है फल रूपी बैराग छाया रूपी साध है जिन तजिया बाद विवाद कबीर ऐसा बीज बोए बारहा मास फलंत

उपकारी जीवंत पंखी चले देसावरी बिरखा सुफल फलंत कबीर साधु संग प्रापति लिखिया होए ललाट मुकत पदार्थ पाइए ठाक न अब घट घाट कबीर एक घड़ी आदि करी

अपनड़े ग्रीवान मैं सिर नीवा कर देख। फरीदा जो तै मारन मुकिया ते नाना मारे घूम। अपनड़े घर जाइए पैर ते ना दे चुम। फरीदा जा तो खट्टन वेल तां तू रत्ता दुनी स्यों मर्ग सवाई नी है जा भरिया तां लदे आ।

फरीदा चार गवाया हंड कै चार गवाया सम लेखा रब मंगे सिया तू आहो केरे कम फरीदा दर दरवाजा जाए कै क्यों डिठो कड़ियाल एहो ने दोसा मारिया हम दोसा दा क्या हाल कड़िए कड़िए मारिया पहरी लह सजाए सोहिड़ा कड़ियाल जो दुखी रण विहाए बुढ़ा हुआ सेख फरीद कंबन लगी देह जे सो वरिया जीवना पी तन होसी खेह फरीदा बार पराये बैसना साई मुझे ना देह जे तू एवै रखसी जियो शरीरो लेह कंध कुहाड़ा सिरकड़ा वणकै सर लोहार फरीदा हो लोड़ी सो अपना तू लोड़ै अंगियार

मिट्टी पई अतुलवी कोय ना हो सीमित, फरीदा मंडप माल ना लाए मर्ग सताणी चित धर, साई जाए समाल जिथे ही तो वंजना, फरीदा जिनी कमी नाहे गुण ते कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थी वही साईं दे दरबार, फरीदा साहिब दी कर चाकरी दिल दी लाहे परांद, दरवेसां नूं लोड़ीए रुखां दी जीरांद, फरीदा काले मैडे कपड़े काला मैडा वेस, गुन ही भरिया मैं फिरां लोक कहें दरवेस, तती तोए ना पल्लवै जे जल टुबी दे, फरीदा जो डोहागन रब दी चूरे दी चूरे, जां कुआरी तां चाओ विवाही तां मामले, फरीदा एहो पछोताओ वत कुआरी ना थी, कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज, चिंजू बोड़न ना पीवै उड्डन संधि डंज,

केतड़िया जुग वापरे एकत पया पास, फरीदा पन्नी कड़ी सवनवी टूटी नागर लज, अजराइल फरिश्ता

चल गए। फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन न हटाए, देही रोग न लग गई, पल्ले सब किश पाए। फरीदा पंख पराहुणी, दुनी सुहावा बाग, नौबत वजी सुबह स्यों, चलन का कर साज। फरीदा रात कथूरी वंडी है, सुतिया मिलन न पाओ, जिन्ना नैन निंद्रावले तिन्ना मिलन को आओ। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सब

जित पिंजरा मेरा सो वसै मास ना तु दुखाए। फरीदा गोर निमाणी सड करे नी करया करे आओ।

आप सिवारे मैं मिलिया सुख होए। फरीदा जी तू मेरा हुए रहे सब जग तेरा होए। कंदी उत्ते रुखड़ा किचरक बन्ने तीर

हियाव न ठाहे कहिदा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद सवैये श्री मुख बाक महला पंजवा आद पुरख करतार करण कारण सब आपे सरबरियो भरपूर सगल कट रहो बेआपे ब्यापत देखिए जगत जानै कौन तेरी गत सिर्फ की रख्या करे आपे हर पत अविनाशी अभिगत आपे आप उत्पत एकै तू ही एकै अंध नाही तुम पत हर अंत नाही पारा वार कौन है करै विचार जगत पिता है सर्ब प्राण को आधार जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार अमृत प्रवाह सार अतुल भंडार पर परहि ते पर अपर अपार पर अपनो पावन कर मंत्र न दूसरो धार यो पद पढ़ लो एक निमख तू घर आन नाई समसर उजियारो निर्मर कोट पराचुत जाहे नाम लिए हर हर जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार सगल पवन तारे एक थे किए बिस्तारे पूर रहियो सरब मैं आप है निरारे हर गुण नाही अंत पारे जी जंत सब थारे सगल को दाता एक लख मुरारे आप ही तारण तारे कुदरत है देखारे बरन चहन नाही मुख नाम सारे जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जीह क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार सर्ब गुण निदानं कीमत न ज्ञानं ध्यानं उचित उचो जानी जय प्रभ तेरो थानं मन धन तेरो प्राणं एक सूत है जहानं कवन पमा देयो बड़े ते बड़ानं जानै कौन तेरो पियो अलख अपार देओ अकल कला है प्रभ सर्ब को तानं जन नानक भगत दार

हार निरंकार अचल पूर्ण विनाशी हरकवंत अनंत रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जाको हुए कृपाल सो जन प्रभु तुम्हें मिलासी। धन धन ते धन जन

मान दान मग जोहन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सैन मीत सुत पाई ता ताहू ते ले रखी निरारी तावन पावन कूरक मावन ए बिद करता उद तन जारी कर्म धर्म संजम सुचने मा चंचल संग सगल बिदहारी पसपंखी बिरख स्थावर बहुबिद जोन प्रमुअत पारी खिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन।

मार्ग शिव चंद मुनि सर रस करस ठाकुर गुण गावत। इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तरण गगन आवत फुण तावत। सिद्ध मनुख देव अर दानव एक तिल ताको मर्म न पावत। प्रिय प्रभु प्रीत प्रेम रस भगती हर जनता के दर्श समावत। तिसै त्याग यान को जाचे मुख दंत रसन सगल का सजावत। रे मन मूड सिमर सुखदाता नानक दास तुझे समझावत।

जरा रोग ग्रस्यो जिम दूतन डन मृत मर्यो है। अनिक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गर्त गर्यो है। प्रेम भगत जरा से नानक कर कृपा संत याप करो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ पूर्ण होई आस हमारी। औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उचारी। इसनान दान तापन सुच क्रिया चरण कमल हृदय प्रभ धारी। साजन मीत सखा हर बंदप जी तान प्र प्राण दारी। उठ गई स्वामी समरथा नानक दास सदा बलिहारी। आवद कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दावन बंदियो ना जात। विदे मन दर्श मग पावक जरियो ना जात। रहियो जन तूर लग नीर नसा कस बोर चले हर पंथ पग। नानक रोग दोख अग मोह छिदै हर नाम खग। उद्दम कर लागै बो पाती बिचरै अनेक शास्त्र बो खटुआ। पसम लगाए तीरथ बो भ्रमते सूखम देह बंदे बो जटुआ। बिन हर भजन सगल दुख पावत ज्यों प्रेम बढ़ाए।

सवैये महले पहले के एक ओंकार सत गुर प्रसाद एक मन पुरख त्याय अमरदाता संत सहार सदा बिखिया ताता चरण ले हृदय बसावो तो परम गुरु नानक गुण गावो गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरे गावै गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान तरे।

जोग जन मालयो गाव जन काद जुगत जोगेसर हर रस पूर्ण सर्ब कला गावे सनकाद साध सिदादिक मुनजन गावे अछल छला।

योग जिन माण्यो गावै कपलाद आद जोगेसर ये परम्पर अवतार वरो गावै जम दगन परसरा मेसर कर कुठार रग तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावै सर्वात्म जिन जानियो कब कल सो जस गावो गुरु नानक राज जोग जिन माणियो गावै गुण बरन चार खट दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंथ गुणा गावै गुण शेष सहस जिह बारस आदि अंत लिव लाग तुना गावै गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान

राज जोग मण्यो बस्यो निर्वैर रिदंतर सृष्ट सगल उदरी नाम ले तरयो निरंतर गुण गावै सनकाद याद जनकाद जुगा लग तन तन गुर तन जन्म सकियत पलो जग पाताल पुरी जयकार धुन कब जन कल वखाणियो हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै माणियो सतयुग तै माणियो छलियो बल बावन भायो त्रेतै तै माणियो राम रघुवंश कहायो दुआपर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो गुरसैन कौ राज भै भगता जन दियो कलयुग प्रमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज बिचाले अटल आद पुरख फुरमायो गुण गावे रविदास भगत जय देव त्रिलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बेण गुण रवै सहज आत्म रंग माणै जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जाणै सुख दियो परीखित गुण रवै गौतम रेख जस गायो कब कल सो जस नानक गुर नित नवतन जग छायो गुण गावै पायाल भगत ना गाद पयंगम महादेव गुण रवै सदा जोगी जत जंगम गुण गावै मुन ब्यास जिन वेद व्याकरण विचार्य ब्रह्मा गुण उचरै जिन हुक्म सब सृष्ट सवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाण्यो जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन माणियो गुण गावै नवनाथ धन गुर साच समायो मांधाता गुण रवै जेन चक्र वै कहायो गुण गावै बलराओ सपत पाताल बसंतो परथर गुण उचरै सदा गुर संग रहंतो दूरबा परूरो अंगुरै गुरु नानक जस गायो कब कल सो जस नानक गुर कट कट सहज समायो सवैये महले दूजे के एक ओंकार सत गुर प्रसाद सोई पुरख धन करता कारण करतार करण समर्थो सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरियो जन हथो ता धरियो मस्तक हाथ सहजमयो वठो छज सुर नर गण मुन बोहियो गाज मारियो कंटकाल गरज धावत लियो बरज पंच भूत एक घर राख ले समझ जग जी तो गुरुद्वार खेलै समत सार रथ उन्मन ले वराख निरंकार कौ कीरत कल सहार सपत दीप मझार लहना जगतर गुरपरस मुरार जाके दृष्ट अमृत धार खालक खानि उतार तिमर ज्ञान जाहे इंद्रस द्वार होय जो सेवै शब्द सार गाखड़ी विखम तार ते नर पावे उतार किए निरपार सत्संगत सहज सार जा गीले गुर बिचार निमरी भूत सदीव परम प्यार कहो कीरत कल सहार सपत दीप मजार लहना जगत्र गोर पर समुरार

0: सच तीर्थ सच स्नान अर भोजन पाओ सच सदा सच पाखंत सोवै सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संजम वरत सच कबजन कल वखाण दर्शन प्रसिय गुरु कै सच जन्म प्रवान अमय दृष्ट शुभ करै हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करै सबै बल सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै गुर नाम नित दरियाओ जन्म हम काल खतोवै सो कहो टल गुर सेविये एहनस सहज सुपाए दर्शन परसिये गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सवैये महले तीजे के एक ओंकार सत गुर प्रसाद सोई पुरख सिवर साचा जाका एक नाम अचल संसारे जन भगत पव जल तारे सिमरो सोई नाम प्रधान तेत नाम रसक नानक लैणा थपियो जेन स्रब सिद्धि कवजन कल सबुद्धि कीरत जन अमरदास बिस्त्रिया कीरत रव किरण प्रगट संसारा साख तरोवर मवल सरा उत्तर दखने पुब अर पश्चिम जय जय कर जपंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायो उल्ट गंग पश्चिम धरिया सोई नाम अछल भगता पवतारण अमरदास गुर को फुरिया सिमरै सोई नाम जख अर किन्नर साधक सिद्ध समाध हरा सिमरा नखियत्र अवर त्रु मंडल नारदाद प्रहलाद वरा ससीयर अरसूर नाम उल्लासे सैल लोजन उदरिया सोई नाम अछल भगता पवतारण अमरदास गुर को फुरिया सोई नाम सिवर नवनाथ निरंजन शिव सनकाद समुतरिया चवरासी सिद्ध बुद्ध जितराते अमरीक पवजल तरिया तिलोचन नामा कल कबीर किल विखरिया सोई नाम
1: अमरदास फुरिया तित नाम लाग ते तीस त्यावन जति तपीश्वर मन वसिया सोई नाम सिमर गंगे पितामह चरण चित अमृत रसिया तित नाम गुरु गंभीर गुरु मत सत्कर संगति उदरिया सोई नाम अषाढ़ भगतहां पवतारण अमरदास गुर कौ फुरिया नाम कित संसार किरण नव सुरतर साख है उत्तर दखण पुब देश पश्चिम जस पाक है जन्म ताय सक अथ जित नाम हर हृदय नवस सुर नर गण गंधर विषे दर्शन या सस पलो प्रसिद्ध तीजो तनाओ कल जोड़ कर त्यायो सोई नाम भगत पवजल हरण गुर अमरदास तैं पायो नाम त्या मैं देव ते तीसर साधक सिन्दर नाम खंड ब्रह्मंड तारी जह नाम सुमाधि हर सोग सम कर सहारे नाम शिरोमण सर्ब मैं भगत रहे लिबधार सोई नाम पदार्थ अमर गुर तुस दियो करतार सत सुरो सील बलवंत सत पाए संग सगन गुरु मत नरवैर लीना जिस धीरज तुर तबल तुझा सहित बैकुंठ बीना पर सह संत प्यार जे करता रह संजोग सतगुरु सेव सुख पाए अमर गुर की तो जोग नाम नामण नाम रस खान भोजन अमरा सदा चाहे मुखमिष्ट बाणी तन सतगुरु सेवो जिस पसाए गत्य गम जानी कुल समूह समुद्र

चरण ताँ परस के अथ चरण गुर अमर पवल रे। हाथ ताँ परस के अथ हाथ लगे गुर अमर पै। जी ताँ परस के अथ जी गुर अमर पणि जय। नैण ताँ परस के अथ नैण गुर अमर पखि जय। श्रवण ताँ परस के अथ श्रवण गुर अमर सुनि जय। सके अथ सोहियो जित ही बसै। गुर अमरदास निज जगत पित। सके अथ सो सिर चल पपणै। जो सिर निवै गुर अमर नित। ते नर दुख न भुख ते नर निधन कहियै। ते नर शोक न हुए ते नर से अंत न लइयै। ते नर सेव न करें ते नर सह सह समपै। ते नर दुलीचै बहै ते नर उथप बिथपै। शुक्ल है ते नर संसार में अपै पटृप मद ते। सके अथ ते नर जल पपणै। गुर अमरदास सो प्रसन्न जी। तैं पढ़यो एक मन धरयो एक करि एक पछाणयो। नैण बैण मोहे एक एक दो ठाए न जाण्यो। सुपन एक प्रतख एक एक स्मह लीणो। तीस एक अर पंज सिद्ध पैंतीस नखीणो। एकों जे लाख लखो अलख है। एक एक कर वरण्यो। गुर अमरदास जल पपणै। तू एक लोड़ै एक मन्यो। जी मत गही जय देव जी मत गही जय देव। जी मत नामै समाणी। जे मत त्रिलोचन चित भगत कंबीर है जानी। रुकमांगत करतूत राम जंपो नित पाई। अमरीक प्रहलाद शरण गोविंद गत पाई। तैं लोभ क्रोध तृष्णा तजी। सो मत जल जानी जुगत। गुर अमरदास निज भगत है देख दर्श पावो मुक्त। गुर अमरदास परसिए पोहम पातक बनस है। गुर अमरदास परसिए सि साध किया सास है। गुर अमरदास परसिए ध्यान लिया पौमुक है। गुर अमरदास परसिए अपहु लभै गो चुक है। एक बिन दुगुण जो तौर है। जा सुमंत्र मान वैल है। जल पा पदारथ इतड़े गुर अमरदास डिठै मिलै। सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग रहो। ताते अंगद लहना प्रगट तास चरणा लिव रहे हो। तित कुल गुर अमरदास आसा निवास। तास गुण कवण वखाणो। जो गुण अलख अगाम तिन्ह गुण अंत न जाणो। बोहितो बिधातै निर्मयो सब संगत कुल उधरना। गुरु अमरदास कीर्त कहे त्राह त्राह तो पाशरण। आप नारायण कला तार जग में परवरयो। निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो। जह कह तह भरपूर शब्द दीपक दी पायो। जे सिखा संगरियो तत हर चरण मिलायो। नानक कुल निमल अवतरियो। अंगद लैणे संग हो गुर अमरदास तारन तरन। जन्म जन्म पाशरण तो। जप तप सत संतोख पिक दर्शन गुर सिखा। शरण परे ते उभरै छोड़ जंपर की लिखा। भगत भाई भरपूर हृदय उचरै करतारै। गुर गौहर दरियाओ पलक डुबंत है तारै। नानक कुल निमल अवतरियो गुण करतारै उचरै। गुर अमरदास जिन सेवियो तिन दुख दरिद्र पर हर परै। चित चित मोहि अरदास कहौं पर कै पी ना सकौं। सर्व चिंत तुझ पा साध संगत हां तकौ। तेरे हुक्म पवै निशान तौ करो साहिब की सेवा। जब गुर देखै शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा। या गम अलख कारण पुरख जो फुरमा मैं सो कहौ। गुर अमरदास कारण करण जिम तू रखै तिम रहौ भिखे के।

बरस एक हों फिरियो किने ना परचो लायो। कहत्या कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। हर नाम छोड़ दूजै लगे तिनके गुण हो क्या कहो। गुरदई मिलायो भिखिया जिम तू रखें तिम रहो। पैर समाध सना ज्ञान है आसन चढ़ियो। त्रम तन कर गए भगत सीला सर लड़ियो। पै निरपव हर अटल मन शब्द गुरु निजा गड्यो। काम क्रोध लोभ मोह पत पंच दूत बिखंड्यो। पलो पुहाल तेजो तना नृपतनाथ नानक बार। गुर अमरदास सत सल भाण तैं दल यतो युद्ध कर। कन हर बूंद बसूरु मावल कुसम बसंत गणंत नयावै। रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल्ले उन जो गावै। पल्ले

अंगद अनंत मूर्त निज धारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो। गुर अमरदास करतार कियो वस वाह वाह कर त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो। नारद त्रु प्रहलाद सदामा पुब भगत हर के जो गणंग अम्बरीक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पणंग। तिन कौ अवतार भयो कल पिंतर जस जगत्र परछायो। श्री गुरु रामदास जय जय जग मैं तै हर परम पद पायो। मनशा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जो तिणंग। बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिणंग। कर्म कर तो दर्श परस पारस सारु बल भट जस गायो। श्री गुरु रामदास जय जय जग मैं तैं हर परम पद पायो। जिहि सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिना। जिहि सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिना। जे सतगुरु सिमरंत जी की तपत मिटावे। जिह सतगुर सिमरंत रिद सिद नम निद पावे। सोई रामदास गुर बल पाण मिल संगत तन तन करो। जिह सतगुर लग प्रभ पाई है सो सतगुर सिमरो नरो। जिन शब्द कमाए परम पद पायो।

मोह माल बवास की यो काम गै केस पछाड़ियो क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान संचाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्ना भव सागर बंधियो सिख तारे सो प्रसन्ना सहरिया तपत सचो तख्त जोग भोग संजुत बल गुर रामदास सच सल भाण तू अटल राज भग दल तू सतगुर चौ जुगी आपे आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत धुर धुर आदि जुगाद अनाद कला धारी त्रियलुआ अगम नगम मुद्रण जरा जमिया आरोहां गुर अमरदास थिर थप्यो परगामी तारण तरण आगे अंतक

मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत सृष्ट निहाल करी, रामदास गुरु जग तारन को, गुर जोत अर्जन माहे तरी, जग और न जाहे महातम में, अवतार उजागर आन कियो, तिन के दुख कोटक दूर गए, मथुरा जन अमृत नाम पियो।

श्री पशुतायो तत विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो। काल समुद्र भय रूप प्रगट हर नामे उदाहरण बसै संत जिस हृदय दुख दा हृदय निवारण निर्मल भेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जानयो भयो तेहि सम सर सोई तरन गगन नवखंड मैं जोत स्वरूपी रहयो पर पान मथुरा कछु भेद नहीं गुर अर्जन प्रतख हर। अजय गंग जल अटल सिख संगत सवनावै नित पुराण बाचियां वेद ब्रह्म मुगावै अजय चबर सिर ढुलै नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो हर बंस जगत जस संचरियो सो कवन कह श्री गुर मयो देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंघासन दियो श्री गुर तह बैठायो रहस कियो सुरदेव तुहे जस जय जय जंपै असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंपै काटे सो पाप तिन नरों के काटे सो पाप तिन नरों के गुर रामदास जिन पायो शतर सिंघासन।

शरीर। खेत पछाणे बीजे दान सो खत्री दरगे प्रवान। लभ लोभ जे कूड़ कमावै अपना कीता आपे पावै। तन न तपाए तनूर ज्यों बालन हड न बाल। सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर फिरी समाल। सबनी कटी सौ बसै सैपन कट न होए। नानक ते सुहागणी जिन्ना गुरमुख प्रगट होए। जो तो प्रेम किरण का चाओ सिर तर तरी करी मिरिया। इत मार्ग पैर तरी चै सिर दीचै कार न कीजै। नाल किराड़ा दोस्ती कूड़े कूड़ी पाए। मरण जापे मुड़िया आवे किते थाई। ज्ञान हीनं अज्ञान पूजा अनवरतावा पाओ दूजा। गुर बिन ज्ञान धर्म बिन ध्यान सच बिन साखी मूलो न बाके। माणू कल्ले उठी चले साध नाही अबे ही गल्ले। राम चुरै दल मेर पै अंतर बल अधिकार।

सब बुद्धि जाली है, एक रह तत् ज्ञान। माथे जूतर लिखिया सो मिट न सके कोई।

करै विखै सिरजनहार। गुरमुखी अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें अकार। तिथे ऊंग न भुख है हरि अमृत नाम सुखवास। नानक दुख सुख व्याप्त नहीं जिथे आत्म राम प्रकाश। काम क्रोध का चूलड़ा सब गल आए पाए। एक उपज है एक बिनस जाए हुक्म आपे जाए। जमण मरण चुकाए रंग लगा दूजे पाए। बंधन बंद पवाई अन करना किसु न जाए। जिनको कृपा धारी अन तिन्ना सतगुर मिलया आए। सतगुर मिले उल्टी पाई मर्जी ब्यासै सपाए। नानक भगती रतिया हर हर नाम समाए। मनमुख चंचल मत है अंतर बहुत चतराई। कीता करतिया बिरथा गया एक तिल थाए न पाए। पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय के जाई। बिन सत गुरु जमकाल न छोड़े दूजे पाए खुआई। जोबन जांदा नतन आपे जर पहुंचे मर जाए। पुत कलत मोहित है अंत बेली को ना सुखाई। सतगुर सेवै सो सुख पाई ना वसे मन आई। नानक से बड़े बड़ भागी जे गुणमुख नाम समाई।

होए, मनमुख बोले अंतले, तस्मै अग्नि का वास, बाणी सुरत न बुझनी, शब्द न करहे प्रगास। उन्ना अपनी अंदर सुध नहीं, गुर बचन ना करहे विसाद। ज्ञानी अंदर गुर शब्द है, नित हर लेप सदा विगास। हर ज्ञानिया की रखदा, हों साध बलहारी तास। गुरमुख जो हर सेव दे, जन नानक तां का दास। माया भियंगम सर्प है, जग के रिया बिख माए। बिख का मारण हर नाम है, गुर गढ़ शब्द मुख पाए। जिन को पूर्व लिखिया, तिन सतगुर मिलिया आए। मेरे सतगुर निर्मल होया, बिख होमे गया बलाए। गुरमुखा के मुख उजले, हर दरगे सोभा पाए। जन नानक सदा कृपान, तिन जो चाले सतगुर पाए।

5. हर गुरमुख कृपा धारियन जन विछड़े आप मिलाए, जन नानक तिस बरहारणे जो सतगुर लागे पाए।

जेवड़ सच्चा नाम। सदा सत्य के गुण गावा पाई, सदा सत्य के संग रहाओ। पैनन गुण चंगियाइयां पाई, अपनी पत के साध आपे खाए। तिसका क्या सा लाई है पाई, दर्शन को बल जाए। सतगुर बच बड़िया बड़ियाइयां पाई, करम मिलै ता पाए। एक हुकुम मन ना जानने पाई, दूजा पाए फिर आए। संगत टोई ना मिले पाई, बैसन मिले न थाओ। नानक हुकम तना बनाई सी पाई, जिना तुरे कमाया नाओ। तेना बिट्टो बारिया पाई, तेन को सद बलिहारे जाओ। से दाड़ियां सचियां जे गुर चरनी लगन, आंदन सेवन गुर अपना आंदन आनंद रहन। नानक से मुह सोने सच्चे दर दिसन, मुख सच्चे सच दाड़ियां सच बोले सच कमाहे। सच्चा शब्द मन वसिया सतगुर महे समाहे। सच्ची रासी सच धन उत्तम पदवी पाहे। सच सुने सच मन लैन सच्ची कार कमाहे। सच्ची दरगाह बैसना सच्चे महे समाहे। नानक बिन सतगुर सच न पाई है, मन मन मनमुख भूलै जाहे। बबीहा प्यो प्यो करे जल निध प्रेम प्यार, गुरमिले शीतल जल पाया सब दुख निवारण हार। तिस चूकै सहज उपजै चूकै कूक पकार, नानक गुरमुख शांत हुए नाम रखो उतार। बबीहा तू सच चौ सच्चे सौ लिव लाए, बोलिया तेरा थाए पवै गुरमुख हुए अलाए। शब्द चीन तिख उतरै मन लै रजाए, चारे कुंडा चोक बरसदा बूंद पवे सहज सुभाए। जल ही ते सब उपजै बिन जल प्यास न जाए, नानक हर जल जन पिया तिस भूख न लागै आए। बबीहा तू सहज बोल सच्चे शब्द सुभाए, सब कुछ तेरे नाल है सतगुर दिया दिखाए। आप पछाणे प्रीतम मिलै बुठा शैवर लाए, चिमचिम अमृत वरसदा तिशना पुख सब जाए। कूक पुकार न होवी ज्योति ज्योत मिलाए, नानक सुख सवन सुहागिनी सच्चा नाम समाए। तुरखसुम भेजिया सच्चा हुक्म पठाए, इंद वरसे दया कर गोड़ी शहबर लाए। बबीहे तन मन सुख होए जां तत बूंद मो पाए। अन्न तन बहुता उपजै धरती शोभा पाए, आंदन लोग भगत करे गुर कै शब्द समाए। आपे सच्चा बख्श लै कर कृपा करे रजाए, हर गुण गावो कामणी सच्चे शब्द समाए। पैका सह शिंगार करो सच रहो लिव लाए, नानक नामो मन वसे हर दर गै लै छाए। बबीहा सगली धरती जे फिरै ऊड़ चढ़ै आकाश, सतगुर मिलै जल पाई है चूकै भूख प्यास। ज्यो पेंड सब तिसका सब कुछ तिसकै पास, बिन बोलिया सब कुछ जानदा किस आगै की चै अरदास। नानक कट कट कट एको बरतदा शब्द करे परगास। नानक तिसे बसंत है जे सतगुर सेव समाए, हर बुठा मंतन सब परफड़े सब जग हरियावल होए। शब्दे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होए, नानक नाम न विसरै जिन सिरिया सब कोए। नानक तिना बसंत है जिना गुरमुख बसिया मन सोए, हर बुठे मंतन परफड़े सब जग हरिया होए। बड़े चाल चलंबड़ नावड़ा लिये कैस, नाव लिये परमेश्वर है पन्नण कारण समरथ। हर हट पी तू तू करें बोले पली बाण, साहेब सदा हदूर है क्या उच्ची करें पुकार। जिन जगत

जाजगदी जय नाम हर गुरमुख हसे गुरमुख हसे गुरमुख रूवे जे गुरमुख करे साई भक्त होवे गुरमुख होवे सो करे विचार गुरमुख नानक पावे पार जने अंदर नाम निदान है गुरबाणी विचार तिनके मुख सादि उजलै तित सच्चे दरबार तिन बैंदियां उठदियां कदे न विसरै जे आ बख्शै करतार नानक गुरमुख मिले न बिछड़े जे मेले सिरजनहार गुर पीरा की चाकरी मह करेड़ी सुखसार नजर करे जिस अपनी तिस लाए हित प्यार सतगुर की सेवै लग्या पौजल तरे संसार मन चिंदिया फल पाई सी अंतर बेबेक विचार नानक सतगुर मिलया प्रभ पाई है सब दुख निवारण हार मनमुख सेवा जो करे दूजे पाए जत लाए पुत कलत कटंब है माया मोह बधाए दरगा लेखा मंगिया कोई अंत न सकी छाए बिन नावै सब दुख है दुखदाई मोह माए नानक गुरमुख नदरी आया मोह माया बिछड़ सब जाए गुरमुख हुकुम नै शै केरा हुक्मै ही सुख पाए हुक्मो सेवे हुक्म अरादे हुक्मै समय समाए हुक्म बरत नेम सुत संजम मन चिंदिया फल पाए सदा सुहागण जे हुक्मै बूझै सतगुर सेवै लिवलाए नानक कृपा करे जने उपर तना हुक्मै लै मिलाए मनमुख हुक्म न बूझै बपड़ी नित होमै कर्म कमाए बरत नेम सुत संजम पूजा पखंड भरम ना जाए अंतरों कसुद माया मोह बेदे ज्यो हस्ती शार उड़ाए जिन उपाए तिसे न चेते बिन चेते क्यों सुख पाए नानक परपंच किया तुर करता है पूर्व लिखिया कमाए गुरमुख प्रतीत पई मन मानिया आंदन सेवा करत समाए अंतर सतगुरु गुरु सब पूजै सतगुर का दर्स देखे सब आए मन्या सतगुरु परम बिचारी जित मिलै तिशना पुख सब जाए हों सदा सदा बलिहारी गुरु अपने जो प्रभ सच्चा दे मिलाए नानक करम पाया तिन सच्चा जो गुर चरनी लगे आए जिन प्रिया सुने से सज्जन मैं नाल अंतर बार फिरा पी हिरदय रखा संभाल जिना एक मन एक चित ते आया सतगुर सो चत लाए तिनकी दुख भुख हो मैं वड्डा रोगया निर्दोख पैल वलाए गुण गावै गुण उचरै गुण मैं समय समाए नानक गुरपुरे ते पाया सहज मिलया प्रभ आए मनमुख माया मोह है नाम न लगे प्यार कूड़ कमावै कूड़ संगरै कूड़ करे आहार बिख माया तन संच मरै अंत होए सब शार कर्म धर्म संजम करै अंतर लोभ विकार नानक मनमुख जे कमावै सो थाए न पवे दरगाह होए खुआर सबना रागां बिच सो पल पाई जित बसिया मन आए राग नाद सब सच है कीमत कही न जाए रागे नादे बाहरा इन हुक्म न बूझा जाए नानक हुक्मै बूझै तिना रास होए सतगुर ते सो जी पाए सब कुछ तिस्ते होया ज्यों तिसे दीर जाए सतगुर बिच अमृत नाम है अमृत कहे कहाए गुरमती नाम निर्मलो निर्मल नाम ते आए अमृत बाणी तत है गुरमुख वसे मन आए हिरदे कमल पर गास्या ज्योति ज्योत मिलाए नानक सतगुर तिन को मेलियन जिन
तुर मस्तक भाग लिखाए। अंदर तिशना अग है मनमुख भुख न जाए, मोह कुटंब सब कूड़ है कूड़ रिहा लपटाए। अंधन चिंता चिंत वै चिंता बद्दा जाए, जम्मन मरन न चुकी हमें कर्म कमाए। गुर शरणाई उबरे नानक लै छड़ाए, सतगुर पुरख हर त्याय दा सतसंगत सतगुर पाए। सतसंगत सतगुर सेम दे हर मेले गुर मेलाए। ए पौजल जगत संसार है गुर बोहत नाम तराए, गुर सिखी पाणा मन्या गुर पूरा पार लंगाए। गुर सिखा की हर तूड़ दे हम पापी पी गत पाए, तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया गुरु नानक मिले आए। जम कांकर मार बिदारियन हर दरगाह लै छाए, गुर सिखा नू शाबाश है हर तुठा मेल मिलाए। गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया जिन बिचों परम चुकाया, राम नाम हर कीर्त गाए कर चानन मग दिखाया। हमें मार एक लिव लागी अंतर नाम बसाया, गुरमति जम जो न सकै सच्चे नाए समाया। सब आपे आप वरते करता जो पावे सो नाए लाया, जिन नानक नाव लै ता जीवै बिन नावै खिन मर जाया। मन अंतर हो मैं रोग परमपुल हो मैं सकत दुर्जना, नानक रोग वाए मिल सतगुरु साधु सज्जना। गुरमति हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात, हर रत्ती हर रंग चोले। हर जैसा पुरख न लभी सब देख्या जगत में टोले, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मन अनत न काहू डोले। जिन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गुल गोले। एक ओंकार सत गुर प्रसाद श्लोक महला पंजवा, रत्ते सही जे मुख नामड़न जिना सजाता साई, चढ़ चढ़ पम दे कच्चे बिरी जिना घर ना आई। तनी बिहोना पाठ पटंबर पाई सेती जाले, तूड़ी बिच लड़ंदड़ी सोहा नानक तैशै नाले। गुर के शब्द अरादी है नाम रंग बैराग, जीते पंच बराइया नानक सफल मारुए राग। जामो एक तो लख तो जीती पिन्नड़े दर कितड़े, बामण बिरथा गयो जनम जिनकी तो सो बीसरे। सोर सोरस पीजिया कबू ना फीका होए, नानक राम नाम गुण गाई है दरगाह निर्मल सोए। जो प्रभ रखे आप तिन कोय न मारी, अंदर नाम निदान सदा गुण सारी। एका टेक अगम मन तन प्रभ तारी, लगा रंग अपार को ना उतारी। गुरमुख हर गुण गाए सह सुख सारी, नानक नाम निदान हृदय उर हारी। करे सचंगा मान दुई गणत लाहे, अपनी नर निहाल आपे लियो लाए। जन दे मती उपदेश बिचों परम जाए, ज्योतिर लिखिया लेख सोई सब कमाए। सब कुछ तिस दे बस दूजी नाहीं जाए,
नानक सुख आनंद पै प्रभ की मन रजाए। गुरपुरा जिन सिमरिया सही पै निहाल, नानक नाम आराधना कारज आवै रास। पापी कर्म कमाम दे करदे हाए हाए, नानक जो मथन मदानिया त्यों मथे त्रम राए। नाम ते आयन साजना जन्म पदार्थ जीत, नानक धर्म ऐसे चवै कीतो पवन पनीत। खुबड़ी कथाए मिठी गलन कमांतरिया, नानक सेई उबरे जिना भाग मथाए। सुतड़े सुखी सबन जो रत्य शय अपने, प्रेम बिछुआ तनी सौ अठे पैर लवन। सुतड़े संख माया झूठी कार ने, नानक से जागन जे रसना नाम उचारणे। मृग तिशना पेख पुलने बुठे नगरम बुठे नगर गंधर्व, जिनी सच राध्या नानक मन तन फब। पतत उदारण पार ब्रह्म समरथ पुरख पार, जिसे उदारे नानका सो सिमरै सिरजनहार। दूजी छोड़ क्वाटड़ी एक सोच तलाए, दूजे पावी नानका बैन लड़ंदड़ी जाए। ते हेटड़े बाजार सौदा करण बन जा रहा, सच बखर जिनी लद्या से सचड़े पासार। पंथा प्रेम न जानी पूली फिरे गबार, नानक हर बिसराए कै पौंदे नरक अंधियार। माया मनोन विसरै मांगै दम्मा दम, सो प्रभ चतन आवी नानक नहीं करम। तिचर मूल ना थड़िंदो जिचर आप कृपाल, शब्द खुट बाबा नानका खाए खर्च धन माल। खांबिब कंदड़े जे लहां किन्ना सावी तोला, तन जड़ाई अपने लहां सो सजन टोल। सजन सच्चा पातशाह शिरशाहां दे शाह, जिस पास बैठिया सोही है सब ना दा बेसा। एक ओंकार सात गुर प्रसाद, श्लोक मेला नावा गुण गबिंद गायो नहीं।

डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कारु हाथ। वाहिगुरु जी, महला पहला, बसंत हिंडोल, घर दूजा।

तेरे कश नहीं सुपने जो संसार चिंता ताकि की जिए जो अनहोनी होए ए मार्ग संसार को नानक तेरे नहीं कोए जो उपजो सो बिनस परो आज कह काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल दोहरा बाल छूट क्यों बंधन पारे कछु न होते अपाए कहो नानक अभे उठ हर गाजो सहाय बल होवा बंधन छूटे सब किस होते अपाए नानक सब किस तुमरे हाथ में तुम ही हो तसहाय संग सखा सब ताज गए को नन बेओ साथ कहो नानक बिपत मैं टेक।

जगत में किन जपयो गुर मंत्र राम नाम उर में गयो जाके सम नहीं कोए जय सिमरत संकट मिटै दर्श तुम्हारो होए मुदामणी महला पंजवां थाल बेच तिन वस्तु पईओ

सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै स्वर से पूरे गुर ते जानी सुनते बानी त कहते पवित सतगुर आप पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा।